0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो मेरी FM 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाट
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा इरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति
2: बुलबुल बुलबुल बुल

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी